0: हेलो, दोनों में रुकान हुई।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो हेलो
0: हाँ मैं कुछ ले हुए
1: ओ मैं कुछ ले फोन में मैं दावा लगा रही
0: ले हुए नहीं कुनो।
1: ओ न्यू कोई तो न्यू आतुक भी उबर
0: आ पापी तो आती हो गए
1: ए रे
0: एरा
1: उनको
0: चल
1: मेरी मम्मी दावा
2: ओ उन लोग वही है
1: ओ
2: पापी
1: यो
2: तो
1: ओ मैं कुछ हो
2: हो
1: ओ मेरी मम्मी ता मैं कुछ
2: ए
1: हो भी है
2: यो
1: मैं कुछ हो
0: ओ
1: ये ना देखो ना पोंगे लग गए ओ आजो वितो विनोतों ओ मम्मी ता को लग गए मैं मैं लग गए एरो ना पों ओ तू वो फेल ले को नू लो को ले रुक पता कियो वितो विनोदे ले ना पों बिलेटे विलेटों ओ बिलेटे ले जीवन ले को नो नू एब्रो बिया बिलेटे जीवन नो ले को ना सियाच पों वो लो आ ओ फिदे मा आजो आए नंबर आखले बिलेटे तो ले आ ओ वितो विनोदे दो ना ना ना दो ना तेरे जी Eyina bi onu mi we ho me lisi me ton si bretin le on était ba meilleure conduite.
0: Kanji,
1: Nous on
0: David,
1: ge
0: fiancé,
1: aya
0: ton nous moi.
1: et nous aya ton e ho na nyawe. Ayi sent tu veux e ho na nyawe. Bo vitote la tin pour kon kon me abo nous on ge ko ko fo bo vile ma no si ya ba ko nya yo. Et on a ningo be ka yan vite. Oui mais ouais ka pon pour na ton ouais na ton vie ton bo et maintenant et là ça na blo nous non blo bo et non dont tout bien ensemble au dia le coup le vote tombe dans un blo bo bon en chaud ville on va dire et le matin quoi en ville là do emploi du temps quoi béton les en blo révision bon et do dans dans mais nous il y a quoi dans emploi dans ce matin quoi béton de soir et do un autre travail mais le lendemain là et là tout au point de na réviser au matware pour aider à réviser aux géographies, ouais, mais le rendu emploi du temps à ton, le coup, ouais, la choye,
0: bah, toi, pour non, pour un ton,
1: on a non, choye, ah, mi blole, mais mi-temps, les non, c'est un macho, et on t'en fout, bon, on s'y a, il bon, d'autres choses, il est là,
0: Gandhi,
1: et n'est d'où, tant d'amé, et quand on t'en fout, il est là, kakai, il est là, ou gang, ou zamé, ou, et là, comme, ni ma o gan o ze o ni ye pou nou ye la ko ma kon la o ni lo vi sian ye ye me kon do